सतगुर प्रसाद उतार खासे दस्तक का पातशाह दसवीं अकाल पुरख की रक्षा हमने सर्वलोक की रक्षा हमने सर्वकाल जी।

जी आंद्र जीओ सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुम कर मान मत्ता तेजा अपना आप जा सर्व करा पर

प्रसाद तोमर छंद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन हर चरण चरण प्रहीन चार कलंक रूपी पाद चित देवदार चित देवदार रूप दुरंत सब जग जगत मधुरंत जस तिलक रूप निधान्त जस चार चार निधान चार चार निधान कलंक रूप अपार सब कलंक स्वरूप दार कल काल कर्म विहीन सकल कर्म धर्म प्रवीण सकल कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप समधाड्य जय थाप भेद भेद अछेद अनचार गात भेद चार गात भेद जय नित्य निगम का हंत उपचार भगतम ज्ञानंद अनुपचार प्रद्याप अनखंड अमित प्रताप अमित प्रताप जय की जगत प्रसार रचे विचार विचार रचे रूप अखंड कलम करंत कमल निधि धारण दुरंत

भूत बन चार चित छाना सब दूता धारि पौन के आहारि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के भछैया धन लोभ के तजयत गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बड़ैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी दिनो जानी बखानी नाहे असना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिश फिर ते तो भूत के पछानी है। जल के तरय को गंगे ऋषि कहत जग आके भजया सूज गोर सम मानिए। सूरज सिवैया दाहे कौल की बड़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए। नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन जारी एक ही कैसे नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बथैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीडत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जड्डाधारी सत्य साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान।

वेद वेद यक देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करे ही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुकन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा रविशन कित वेद पुराण कित सिमृत समूहन के होय होय बिताए है। मो निधि मदार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीर पिकम्बर कित गाने ना परत इत भूम ही ते होय के फिर भूम ही मिलाए है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक दोप जी कपट वेश पोसती अनेक दानी वावत है। शीश को कह भय मल्ल जप काठ अनेक दंड सोतना डंडोत अष्टांग अथ तीस को कह भय रुक जप डार रहे उर्दमुख मन तेना मुंड निहरायो अद ईश को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीश पट कत जाग कान में खजूरा था से मूड छट कत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आग गोचरिया फल फूल को भजैया सदा बन को ब्रह्मया और दूसरो न बोक सौ कह भयो भीड़ जो खसत शीश वृक्षन सो माटी को भजैया बोल पूज लीज जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर

ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਾਂ ਗੌਰ ਚੀਲ ਦੇਸ ਦੇਸ ਵਿਚਰਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਮਹਾਦਾਨ ਮੈਂ ਨਹੂ ਜਲੀਨ ਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨ ਦਿਨ ਕੈਸ ਕੇ ਤਰਤ ਹੈ जैसे एक सोंगी कहूँ जोगिया बैरागी बने कबहू संन्यास भेष बन कह दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होइ के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है ना जन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीधर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओगाधा अनेक ता पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग था।

ताप के सहित जो बिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो बिपायत अजाप देव बूदना सदीव तुही।

जैसे एक दूर ते अनेक दूर मूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग गुड़ उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पछ को करेंगे भज, के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत, कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदी नामका निवासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त, कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत, कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोद हारे देवता विरोध हारे, दानव बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मटली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित तप

दुखं कहूं औखदि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जठ कंद्रव किन्नर कहानी कहूं राजसी सात के तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम के भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जठ विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट के पृष्ट के ऋष्ट बन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं

अगबानी कहूंगा रुडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या हो तंग प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीरा।

जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं सत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम वेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल दे ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम वरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई यतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध पाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत सात्रत उचरंत वेद कई कोग काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पौन हार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साक पा पत्र भच नई तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अग्न होत्र कहूं तीर्थ धरम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गर्त भांत बांधन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत्सु भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उजरत सो करम न्यौली याद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मख को बखान कहूं कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं कर्त जच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत नाच कहूं गान गीत कहूं कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्म देश देशन उदार।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका। जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न सोख सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र सितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव आप प्रचंड लियो। श्रेय सुरेन्द्र श्रेय सुरेन्द्र रूपेन्द्र नकेन्द नकंग श्रेय जज गंधर्व फणेन्द्र भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिकंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद्भुजंग किये देव देव सरातंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न दात है न मात है।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेद है बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त पे विषय किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सूत है।

हस्त कीट बिखै बस सब ठौर मै निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिखै रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र। आद देवो दार मूर्त अगाध नाथ अनंत, आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेब, सनक औसन के सनंदन पाव ही न हसेब। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार, नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओ मुख चार। सर्व सबद पतार के दर जाप ही जय जाप, आद देवा काद तेज अनाद मुरत अताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीन। जाच गंधर्व देवदानु न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप, रात दिवस न

सोत सोत हटे सभय सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब, पड़त पड़त थके महाकब गर्द गाड़ अनंत, हार हार कहे सबो मिल नाम नाम दुरंत। वेद भेद न पायो लखियो न सेव कतेब, देवदानो मूढ़ मानो जश न जान जेब, भूत भवान।

सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूमका जले थले मय जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीवत दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध जा

हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मोन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोध सोध थके महासुर पायो नह पार।

वृत्ते चरासुर मारण पत उधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी महासुर मर्दन रम कपर्दन छत्रछिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टि उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड।

चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नीत मंकन तुजा फरंकन फणे फंकारण जोध जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दाधे दामनी प्रकाश प्रहासन सुचम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़।

कारण धूम धूम कारण द्रव मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु खमंकण सत्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद कुमारा गाध वृते सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे गावरु कुमारे अधम्बधारे नरक निवारे आद कथे।

दामनी दमंके के हर लंके याद अतन के क्रूर कथे जय जय हो से रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन रुदन विमोचन सोज बिसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे

सुर मर्दन चंड चक्रदन आदि गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती सत्र मतंती दुष्ट

सुर नर प्रतिपालन पति दो धारण दुष निवारण दुख हरे। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन विश्व विदुंसन सृष्ट करे। दामनी प्रकाशे अंतर नासे ज्योत प्रकाशे अदुल बले दानवी प्रकाशन सर्वर वरखण दुष्ट।

दुख दोख प्रभक्षण सेव कर अक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्ध लगा है दुख हरे।

मते अष्टायत चमकण सहस्र झमकण दामिन दमकण आदवृते डुकडुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फुरंके शुद्ध गति जय जय होसी मै खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते जछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो दारण एक भटे पापान बेहंडन दूज प्रचंडन खंड।

असुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदन वर्दन बिडाल वदे सरदार बिपरखण दुर्जन धरखण तुलन मरखण धर्म धुजे धूमराज विदुंसन सुणत जुनसन सो।

तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम की हो आप करते बसार जद बभूतन भय आनंद तहु कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम कादन कृपाल अद्वय अभूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई बुलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल।

जे सत्र मित्र दुए गसार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास तात कहे कौन वे कहे नाम तास है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज दाग जल थल महीब बंतन दुरंत जह नेत नेत निज दिन उचरंत पायो न जाय जह पैर पार दी नान दोख दहता उदार कई गोट इंद्र जह पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निज दिन

दीनन की व्रत पाल कर संत उबार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नाधिप सर्व समय सबको व्रत पार पोखत है जल मैं धन मैं बल मैं करके नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार है दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके बदमावत ग्वेत कते व भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोग रुहान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगमेव न भेव लख्यो ब्रह्म स्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए वो रण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पदमा।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह भी न स्नेह सभोतन देह विरक्त अगेह अच्छा है। जान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बात बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर बाप संबोहन भेट न पावे। और की बात कहा कह तू सौ सौ भेट ही के बट बीच बचावे। जाच भुजंग सुदानव देवा भेव तुम सब ही कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो। वेद कतेब न भेद लगयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनाद सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेद है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। याद अनाद अगाद अभेग अद्वेग जप्यो तिन्हीं गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुखकारे। दीन दयाल काल भजे बिना अंत को अंत के।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे आरब के अरबी आराधे तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मान सो तपस्या कर।

गोखा गुण गावे जिन मचीन के शेष न्यावे ते बते थे आए दोख देह के दलत है जिन्हें तो हृदय तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल फूल सिंह फलत है देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहि चिटिकी चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है किते ससुरासी किते सूरज प्रकाश किते

पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासिक के मानी है जंत्र हूँ न जात जागे बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के सो

काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। जो गहूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोह होने को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है।

विश्व को वरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न पार पार वार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हब सिहल विधावे पूर्व।

भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है धरिया ध्रुम चाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल इंद्र के कुल के। हंस निशी सिहारो मही रसी हुसना बाद गंगा कैसे धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदगढ़ की रसते हरी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसी बूर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकांसी बुलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बकरी कंधारी गोर कखरी गर्द जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्प ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी यंत्र मंत्र तयता बिना

दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो, याही काज तरा हम जनमंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारण। एक कार्य दे लई महाराज जी, अकाल पुरख परमात्मा जी ने वाहिगुरु जी ने आप जी नू जो भेजना कीता ओ कार्य आप जी ने कर लिया है। तो बाद ए भी वचन आया के वाहिगुरु जी वालों ए हुक्म है के हुण

दरबार नित्य दरबारा सुखम सनकारा लक्ष्मी कड़ी तुम्हारे दरबारा सर देवते कड़ी मुस्कारा दोरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण मुरे अवतार जगमग ज्योति बिराजरी श्री अपन कृपा।

0: जुग जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पुत्र हाजर हजूरी विच बैठ करके धन सोडी सुल्तान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पावन चरणों में हाजरी भर रही गुरु की साजी निवाजी सात संग जी आओ आप जी बहुत वड्डे कर्मा वाले हो भाई जो महाराज ने रहम की निगाह की है कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना दे मां वाका अनुसार कर कीर्तन होए उधारो मारे कहते भाई कीर्तन करांगे तो उधार होना है। सच्चे सतगुरु जी ने महान समय बख्शे है अपने पावन पवित्र चरणों में बह के सानू हर जस करन दा सुभाग समा बख्शिश कीता है ते जतन करिए इस समय नू अजाई ना गवाइए गल्लां तो संकोच करियो जिन्ना समा महाराज बख्शते है जतन करियो बड़े प्यार दे नाल गुरु महिमा गाइए गुरु महिमा सरवण करिए जिन्हें तुदनों धन कहया तिन जम नेड़ ना आया। सचे पातशाह नूं जे एक वारी प्रेम दे नाल आपां धन कह दईए ना प्यार च कह दईए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज मारे कहिंदे जन्म मरण दे गेड़ जिहड़े ने उह खत्म हो जांदे आ। कोई गावै को सुणै हर नामा चित लाए गाउण दा भी फल है सुणन दा भी फल है शर्त दोवां वास्ते इक्को ही है। मारे कहिंदे गाउण वाला चित ला के गावे ते सुणन वाला चित ला के सुणे जे चित ला के गावांगे चित ला के सुणांगे ते मारे कहिंदे कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। मारे कहिंदे फिर शंके वाली कोई गल नहीं जिहड़ा चित ला के सुन लेगा जिहड़ा चित ला के गा लेगा अखीर विच उहनू परम पदवी प्राप्त होनी है। इस करके भै रख के महाराज दी हजूरी च बैठीए डर रख के बैठीए भी आपां बैठे कित्थे आ। ऐ सतगुरु जी तेरा शुक्र है तू सानू चरणा विच बाया आ हुण एक कृपा होर करियो ये मन तेरे चरणा दे विच जुड़ जावे। आयो गुरफते प्रवाण करियो गज वज के गुरफते बुलायो दोवें हथ जोड़ के साहब पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणा च शीस झुकाओ गज वज के प्यार च आखो जी वाहे गुरु जी का
1: खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: साई घड़ी सुलखणी सौह नाल विहावे महाराज कहिंदे घड़ी उह सुलखणी है जिहड़ी गुरु के चरणा दे विच बीत जावे बाकी ते जिहड़ा समा है ना अपना वह अजाई बीत रहा वा। समा उ चंगा जिहड़ा गुरु चरणा दे विच उहदे गुण गाउंदिआं बीत जावे। प्यार च पढ़िओ सारे जणे नाल बोलिओ कोई रसना वांझी ना रहे भाई।

तीर्थ नावह आर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जित अलख नाम करतार सुकम मूर्त नाम।

अंडज जेर जगत पूजा काली सित जा सोमित जाने नानका श्राम राजनता नानक जंत पाए।

महला पहला कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसन हार कुड़ सुना कुड़ रूपा कुड़ पहनना कुड़ काया कुड़।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगे मोक द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़।

जगत मुच ओए जे आवे आसकर जाय निराशे कित फल पिके फूल बकबके कमने आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चुगया तत सबको नीवे आपको पर